गुड मॉर्निंग छत्रपती संभाजी नगर. उठा उठा, सकाळ झाली आहे आणि नवीन दिवस सुरू करण्याची वेळ आलेली आहे. तुम्ही ट्यून केले MGM 90.8 FM. एक्झॅक्टली 7:12 वेळ झाली आणि आरजी अदनान तुमच्या सोबत आहे. आय नो, असं म्हणजे कसं सकाळी उठायला थोडा कंटाळा येतो, पण करावं काय, उठावं लागतंय. क्योंकि भाई नए दिन की शुरुआत करनी है तो उठना बहुत जरूरी होता है. और इसी के साथ अगर मॉर्निंग का कोई विचार कानों पर आ जाए ना तो मॉर्निंग अपनी गुड हो ही जाती है. तो आज का एक सुविचार बहुत ही बेहतरीन है, यूं ही रैंडमली इंस्टा स्क्रॉल करते वक्त वो मेरे सामने आया था, जिसमें लिखा था कि जितना शांत रहोगे जिंदगी उतनी ही आसान लगेगी. लोग बदलेंगे तुम्हें, खुद को नहीं खोना है, याद रखना है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, जितना तुम शांत रहोगे ना तो उतनी जिंदगी आसान रहेगी. और क्या बोलते ना, स्ट्रेस वगैरह कुछ आपके नजदीक नहीं आएगा. वरना जितना तुम बड़बड़ करोगे, गुस्सा करोगे तो अपने आप सब कुछ भसड़ मची जाती है. तो शांति बनाए रखिए अपने अंदर भी और अपने जिंदगी में भी, फिर देखिएगा अपने आप सब कुछ बेहतर हो जाएगा. यही बेहतरीन सुविचार के साथ आज के शो का आगाज करते हैं. कुछ मेरी और कुछ आपकी बात करते हैं, बहुत सारे नकों के साथ एंटरटेनमेंट की सौगात लेकर आते हैं. बट कुछ देर में, तब तक ये और एंजॉय कीजिए आने वाला सुपर सुपर हिट गाना विद मी. इट्स मीन आरजे अदनान ओनली ऑन MGM 90.8 FM.

गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।
1: एक बार एक गधा गलती से सूखे कुएं में गिर गया। कुआं काफी गहरा था। सारे गांव वाले इकट्ठा हुए। लोग बोलने लगे, अब तो ये गया बेचारा। उनकी बातें सुनकर वो गधा और जोर जोर से रोने लगा। लोगों ने कई घंटों तक गधे को बाहर निकालने की नाकाम कोशिश की, लेकिन सब बेकार। आखिरकार उन्होंने सोचा कि गधा बूढ़ा है और कुआं भी सूखा पड़ा है, तो ये फैसला किया जाए कि कुएं में ही दफना देते हैं, ये बेहतर होगा। सबने फावड़े से मिट्टी शुरू की। मिट्टी जैसे ही गधे की पीठ पर गिरती, वो झटका मारता, हटाता और उसी मिट्टी पर खड़ा हो जाता। गांव वाले लगातार मिट्टी डालते रहे, पर हर बार गधा उस मिट्टी को अपने नीचे दबाकर ऊपर उठता गया। घंटों बीत गए और धीरे धीरे कुआं भरता गया। आखिर में सबकी हैरानी के बीच वो गधा कुएं से बाहर निकल गया। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि जब भी कोई तुम्हारे ऊपर मिट्टी फेंके, तुम्हें दबाने की कोशिश करे, तो दबना नहीं बल्कि उसी मिट्टी का इस्तेमाल ऊपर आने के लिए करना और आगे बढ़ना।
0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

ये संसार एक विशाल कुरुक्षेत्र है और हमारा जीवन एक महाभारत। हमारा कुरुक्षेत्र कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर है। अपनी महाभारत कभी हम शस्त्र के बिना लड़ते हैं, कभी शस्त्र के साथ, कभी अपने शत्रु के विरुद्ध और कभी अपने विरुद्ध। न्याय के लिए, सत्य के लिए, अधिकार के लिए, इस संघर्ष में हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारा विश्वास है, सबसे बड़ा शस्त्र हमारा कर्म है।

0: लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, क्योंकि मेंटल हेल्थ वेल तो जिंदगी एकदम ऑल इज वेल। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। So, आपसे ना तो मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करने के लिए आप अपने साथ डॉक्टर मानसी करसगांवकर, लाइसेंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम RCI एंड हेड ऑफ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट MGM यूनिवर्सिटी। सो मैम, आज का मेरा आपसे सवाल ये है कि हमें ये बताइएगा कि डिप्रेशन मतलब क्या होता है इसका?
1: बेसिकली डिप्रेशन जो है ये एक रियल मेडिकल कंडीशन है। एंड आजकल क्या हो रहा है कि लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि वो दुखी है, मतलब वो सैड हैं, या वो ग्रीफ में हैं, या वो डिप्रेशन में हैं। कभी कभी ये तीनों चीजें हम इंटरचेंज करके भी बोलते हैं कि मान लीजिए अगर मैं दुखी हूँ या कोई मेरे दोस्त या कोई मेरे फैमिली मेंबर दुखी हैं, तो हम क्या बोलते हैं, अरे वो बहुत डिप्रेशन में चल रहे हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गए हैं। तो ये यूज जो हम टर्म को बार बार कर रहे हैं ना, तो इसका भी थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट ही हो रहा है क्राउड पर। सो द थिंग इज कि डिप्रेशन इज वेरी मच रियल एंड इट्स अ मेडिकल कंडीशन जिसको हमको केटर करना है, वो भी एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से। तो अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है ना, वो लाइसेंस होता है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से, उनको RCI बोला जाता है। तो RCI लाइसेंस्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास किसी भी व्यक्ति को जाना चाहिए अगर उन्हें लग रहा है कि यू नो ही इज डिप्रेस्ड, या वो परसिस्टेंटली लो फील कर रहे हैं, और या तो वो साइकेट्रिस्ट के पास भी जा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि डिप्रेशन ये एक रियल मेडिकल कंडीशन है एंड वी ऑल शुड टेक इट सीरियसली, बट एट द सेम टाइम हमें उसे हल्के में भी नहीं लेना है एंड हमें केटर भी करना है उसको, और हमको ओवरली यूज नहीं करनी है ये टर्म। हमको पहले पता लगाना है कि क्या हम दुखी हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं, या फिर हम डिप्रेशन में हैं।
0: ओके, सो एग्जैक्टली डिप्रेशन मतलब क्या, इस बारे में अभी हमने मैम से जाना। सो ये बातें याद रखिएगा, और भी हम हर दिन ऐसे टिप्स जानेंगे अबाउट मेंटल हेल्थ के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड विद RJ Adnan इन द शो ऑल इज वेल।

0: गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सुन रहे हो आरजे अदनान के साथ आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन MGM 90.8 FM, और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट, और लेकर आया हूं आपकी पसंदीदा महफिल, आपकी फरमाइश। और इस वक्त ना तो हम आपकी फरमाइश पूरी करते हैं। तो आज की रिक्वेस्ट हमें भेजी है हमारे एक लिसनर्स ने, जो पुराने जमाने के मेलेडियस के बहुत बड़े फैन है, और उनका नाम है अंकित देशमुख, और उनकी फरमाइश है ये गाने की।
1: आज

दिल अपना और प्रीत पराई 96 की मूवी का ये टाइमलेस क्लासिकल गाना है और इसे अपनी खूबसूरत आवाज में गाया है लता मंगेशकर जी ने और इसे कंपोज किया था शंकर जय किशन की जोड़ी ने और लिरिक्स लिखे थे शैलेंद्र जी ने। तो चलिए यादों के सफर में चलते और फरमाइश वाला गाना प्ले करते हैं फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई से। और हाँ, अगर आपकी भी कुछ फरमाइश हो तो आप हम तक पहुंचा सकते हो 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। बिंदास फरमाइश बताइए और भी एंजॉय कीजिए फरमाइश वाला गाना ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: अजंता क्योस, जिसे दुनिया वर्ल्ड हेरिटेज के नाम से भी जानती है। हेलो, माय सेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। और यू नो व्हाट, हर साल ना तो लाखों टूरिस्ट यहाँ आते हैं, लेकिन एक सवाल आज भी है, और वही सवाल है कि दो साल पहले अजंता के लिए इलेक्ट्रिक बसेस शुरू करने का वादा किया गया था, लेकिन वो कहते हैं ना,
1: क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा।
0: और आज तक वो वादा सिर्फ कागजों पर ही नजर आता है। आज भी टूरिस्ट को डीजल बसेस से सफर करना पड़ता है। डीजल का धुआं सिर्फ हवा को नहीं, बल्कि अजंता की हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स और इसके एनवायरनमेंट को भी धीरे धीरे नुकसान पहुंचा सकता है। और टूरिस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि ई बसेस में टेक्निकल प्रॉब्लम थी और उन्हें इस महीने तक शुरू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कितने टाइम से की जा रही है, पिछले 4-5 महीनों से बस कोशिश की जा रही है। सवाल सिर्फ बसेस का नहीं है जनाब, सवाल है हमारी जिम्मेदारी का। अगर हम अपनी हेरिटेज को फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा नहीं सकते तो भाई क्या ही फायदा फिर उसका। पोल्यूशन फ्री ट्रांसपोर्ट सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, जरूरत भी है। और इस डीजल बसेस से हो क्या रहा था कि इसका सीधा असर ना तो अपने अजंता के उस पर हो रहा था, वहाँ की पेंटिंग्स पर हो रहा था। एंड ये इतने साल पुरानी पेंटिंग से दुनिया भर से लोग यहाँ पर उसे देखने आते हैं, एंड खुदा ना खास्ता इस पोल्यूशन की वजह से कुछ हो गया तो उस अजंता के उसकी खूबसूरती पूरी चली जाएगी। प्रशासन ने सीरियसली ध्यान देना चाहिए एंड डीजल बसेस हटाकर इलेक्ट्रिक बसेस यहाँ पर लानी चाहिए। अब प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि एक महीने के बाद ये बसेस आने वाली है जो कि इलेक्ट्रिक बसेस रहेगी। देखते हैं एक महीने के बाद आएगी या नहीं आएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाय द वे, आपको पता है क्या कि अपने अजंता क्यूज में हर साल कितने टूरिस्ट आते हैं? नहीं पता, वो भी बताऊंगा कुछ ही देर में। तब तक स्टे ट्यून।

अपने शहर के एक और पहचाने अजंता एलोरा की गुफाएं, आप वहां पर तो गई होगे। हेलो, मैं सिल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमटीएम 90.8 एफएम। और यू नो व्हाट, अजंता एलोरा की गुफाएं तो हम सभी लोग जाते हैं, और कोई भी अपने शहर में आया ना तो हम उसे ये दिखाने तो जरूर लेकर जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ना तो हर साल यहां पर कितने लोग विजिट करते हैं, तो 2025-26 को लेकर यानी कि अब तक अजंता में तकरीबन 4,73,000 से ज्यादा टूरिस्ट ने यहां पर विजिट किया था। इसमें 4,00,000 इंडियन थे और 11,000 से ज्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट थे। और एलोरा के उसकी बात करें तो यहां पर हर साल तकरीबन 5,00,000 से ज्यादा टूरिस्ट विजिट करते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। अब इसमें से नेशनल कितने और इंटरनेशनल कितने, इसकी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन तो अब तक आई नहीं है, इसका रिपोर्ट आना बाकी है। वैसे बात एक है यार, अजंता की केव्स हो या तो फिर एलोरा की केव्स हो, यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पोल्यूशन, जिसकी वजह से ना तो इन गुफाओं की जो खूबसूरती है, इसमें की जो पेंटिंग है वो खराब होती जा रही है। और प्रशासन ने कहा था कि वो ऐसे टूरिस्ट प्लेस पर ना तो इलेक्ट्रिक बसेस शुरू करेंगे, 2 साल पहले कहा गया था, लेकिन वो अब तक हुआ ही नहीं। कुछ टाइम के लिए शुरू कर दी गई थी, बाद में वो बसेस बिगड़ गई और उसके बाद वापस कभी रास्तों पर दिखी नहीं। तो अब कहा गया है कि 1 महीने के अंदर ये बसेस वापस से शुरू होगी। आई होप कि ये जल्द से जल्द शुरू हो जाए, ताकि इन गुफाओं की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए हमें पोल्यूशन से इनको दूर रखना पड़ेगा। शुरुआत बसेस से कर सकते। वैसे सोचने वाली बात यह है कि जब अजंता और एलोरा जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हमारी पहचान है, तो उनकी सुरक्षा सिर्फ सरकार की नहीं, हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो आप सोचोगे हमारी जिम्मेदारी कैसे, बेसिक चीज वहां पर जाने के बाद उस गुफाओं की खूबसूरती को बरकरार रखना है, तो वहां के दीवारों पर कुछ भी मत लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। एंड कचरा वचरा मत फेंकिए, जरा तहजीब से वहां पर रहिए, इतना ही मैं कहूंगा। बाकी वैसे अजंता की गुफाओं का जिक्र ना तो एक गाने में हुआ है, वही गाना भी हम एंजॉय करते हैं। आफ

0: कहता है कि मौत का कुआं बस मेले में दिखता है, कभी हमारे शहर के रास्तों से गाड़ी चलाकर तो देखिएगा। हेलो, मायसेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। सो मौत का कुआं देखने के लिए आप मेले का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मेले में तो भी आप ना तो मौत का कुआं बस देख सकते थे, लेकिन अपने शहर के रास्तों से आपने गाड़ी चलाए तो आप बस मौत का कुआं देखोगे नहीं, वो फील भी करोगे, उसमें परफॉर्म भी करोगे। जैसे आप अपने घर के बाहर निकलते हो तो मेन रोड पर आते हो जालना रोड के ऊपर, वहां पर आने के बाद आपका इस्तकबाल स्वागत होता है बड़े बड़े गड्ढों से। तो हो गया ना ये मौत का कुएं वाला गड्ढा, अपना जालना रोड बन चुका है खड्डा रोड। तर ही एक नवीन ओळख आपल्या शहरातील रस्त्याने मिळालेली आहे। जित पहा तित खड्डे खड्डे आणि खड्डे, आणि अशा खड्ड्यातून गाडी चालवताना वाटतंय की भाऊ मी आज घरी जिवंत येईल का नाही। लेकिन ये सब के बावजूद दिमाग में हमारे किंग नंबर वन का वो डायलॉग चलता रहता है,
1: सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते।
0: बाय द वे, अपने शहर में ना तो 10 ऐसे बड़े गड्ढे हो चुके हैं जिनकी एक आइडेंटिटी बन चुकी है अपघाती खड्डे म्हणून। क्रांति चौका जे डावे बाजूला पूर्णपणे खड्डा झालेला आहे, आणि अमरप्रीत चौक ते मोंडा नाका ब्रिजच्या डावे बाजूला सुद्धा पूर्ण रस्ता उखडला आहे, आणि याच्यावर पॅचवर्क केलेलं पण इतकं घाण ते पॅचवर्क आहे ना, त्याच एरियात जास्त गाड्या स्लिप होत आहेत। पण महानगरपालिका कधी हे काम पूर्ण करेल आणि खड्डे मुक्त शहर आपल्याला बघायला मिळेल, हे एक स्वप्न झालंय। वही सपना जो आप देखतो की आपकी क्रश आपसे बात करेंगी और आप दोनों शादीवादी करेंगे, वो भी सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है। वैसा ही सपना ये भी है, अपना शहर खड्डा मुक्त कभी नहीं होगा, ये एक अधूरा सपना ही बन के रह जाएगा। खैर, सो बी सेफ बी केयरफुल मैं इतना ही कहूंगा, क्योंकि अपनी जान की फिक्र हमें खुद को करनी है। एंड बाकी आप बस फिलहाल एंजॉय कीजिएगा आने वाला सुपर डुपर हिट गाना विद आरजे अदनान ओनली।

मेरा एक दोस्त है जिसके पापा पुलिस में है और उसके पास एक फोर व्हीलर है। जब हम बाहर जाते हैं दोस्त लोग तो वो गाड़ी पर ना पुलिस की प्लेट लगाता है, वो नाम जो लिखा होता है ना वो। मैंने पूछा भाई ऐसा क्यों करता है, तो कहता है भाई अपने को ना तो इम्प्रेशन जमाना है और ऐसा पुलिस नाम दिखाना तो ट्रैफिक में कोई दिक्कत नहीं आती। अब उसे क्या पता ये इम्प्रेशन के चक्कर में और डिप्रेशन में भी जा सकता है। हेलो मैं आरजी अदनान एंड यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र पुलिस ने ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन लेने का इंस्ट्रक्शन जारी किया है। प्राइवेट गाड़ियों पर बिना आधिकारिक तौर पर पुलिस लिखना या पुलिस की आइडेंटिटी का गलत इस्तेमाल करना महंगा पड़ सकता है और रिपोर्ट के मुताबिक क्या है कि ऐसे प्लेट्स का मिसयूज होता है इल्लीगल कामों में, लोगों को डराने में, धमकाने में। तो इसी वजह से अब ऐसे केसेस में मोटर व्हीकल एक्ट के साथ साथ क्रिमिनल एक्शन भी लिया जा सकता है। सो याद रखिएगा, पुलिस लिखने का हक सिर्फ ऑथराइज पुलिस व्हीकल को ही है। सिर्फ स्टाइल के लिए, इम्प्रेशन जमाने के लिए या फिर VIP लगने के लिए अगर आप अपने गाड़ियों पर पुलिस लिखोगे तो बड़ा पछताओगे। तो मैं तो मेरे दोस्त को समझाने वाला है भाई ऐसा मत कर वरना तो इम्प्रेशन के चक्कर में डिप्रेस हो ही जाएगा। और आप भी जरा बताइए अपने दोस्तों को या जो कुछ ऐसी हरकतें करता है उनको। स्टे ट्यून।

आज बात उस फिल्म की है जिसने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं बल्कि हर इंडियन फैमिली के दिल पर राज किया था। हम आपके है कौन, इसको ना तो आज 32 साल पूरे हो गए हैं और 90s का वो दौर जब शादी का मतलब सिर्फ फंक्शन नहीं इमोशंस हुआ करते थे, और इस फिल्म ने हमें सिखाया कि एक फैमिली भी किसी फेस्टिवल से कम नहीं होती। उसके गाने तो लाजवाब थे यार, पहला पहला प्यार है पे धड़कने बढ़ जाती थी, दीदी तेरा देवर दीवाना पर हर एक शादी का घर डांस फ्लोर बन जाता था, और जूते दो पैसे दो इस गाने के बिना तो कोई शादी मुकम्मल हो ही नहीं पाती थी, और प्रेम और निशा क्या केमिस्ट्री थी ना, ना और ड्रामा ना और एक्शन, बस प्यार शरारत और वो मासूमियत जो आज भी दिल को छू जाती है। इस फिल्म का हर कैरेक्टर अपना सा लगता था, जैसे भाभी, दीदी, मामा, चाचा और हाँ वो टफी, अरे भाई उस डॉगी ने तो लव स्टोरी सेट कर दी थी। और आज भी ना टीवी पर ये फिल्म आ जाए तो रिमोट ऑटोमेटिकली रुक जाता है, डायलॉग्स याद है, गाने याद है, फिर भी हर बार देखने का मजा अलग लगता है। तो चलिए फिर सेलिब्रेट करते हैं 32 इयर्स ऑफ हम आपके हैं कौन, क्योंकि कुछ फिल्में सिर्फ देखी नहीं जाती, जी जाती है। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट आरजे अदनान, और अब वक्त है उसी एवरग्रीन साउंडट्रैक का जिसने हर जनरेशन को एक साथ गुनगुनाना सिखा दिया था। हम आपके कौन का ये ब्यूटीफुल गाना जो अभी प्ले होगा ओनली on MTM 90.8 FM.

90s का वो जमाना था जब OTT नहीं होता था, लेकिन एंटरटेनमेंट फुल ऑन होता ही था। और उस दौर की एक फिल्म थी हम आपके हैं कौन, और इस फिल्म को ना 32 साल पूरे हो रहे हैं, यानी कि 32 years of हम आपके हैं कौन। सच बताओ जब ये फिल्म रिलीज हुई थी ना तब हम तो पैदा भी नहीं हुए थे यार, लेकिन हमसे पहले हमारे मम्मी पापा इसके डाई हार्ट फैन थे। उनके लिए ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, एक सेलिब्रेशन थी। सिनेमा हॉल जाना एक इवेंट होता था, नए कपड़े पहनना और फिल्म देखने के बाद घर आकर हर गाना गुनगुनाना, उसमें एक अलग ही मज़ा था। शादियों में तो यार इस फिल्म के गानों के बिना शादी मुकम्मल होती ही नहीं थी, और फैमिली मोमेंट्स के लिए पूरी फिल्म रिफ्रेशमेंट हो जाती थी। मुझे अभी भी याद है गर्मी की छुट्टियाँ होती थी 2005-06 के दरमियान, जब गर्मी की छुट्टियों में हम नानी के वहाँ जाते थे तो मेरे मामा रेंट देकर यह फिल्म की कैसेट लेकर आते थे और पूरी फैमिली बैठकर ये फिल्म देखती थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उस वक्त ना सोशल मीडिया नहीं था, ना रील्स, ना मीम्स, फिर भी ये फिल्म इतनी वायरल हुई कि घर घर की कहानी बन गई थी। वायरल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के वक्त में वायरल पता होता है सबको क्या है, उस वक्त में सुपर डुपर हिट तो ये फिल्म थी ही। आज हम जेंजी और मिलेनियल्स भी इस फिल्म को देखते हैं और समझ आता है कि क्यों हमारे पेरेंट्स आज भी इसके गाने सुनते हैं और स्माइल कर देते हैं। तो इसीलिए यार कुछ मूवीज टाइम के साथ पुरानी नहीं होती, वो जनरेशन से जनरेशन तक पास आउट होती है। तो आपने अगर ये फिल्म अब तक पूरी नहीं देखी है तो देखिएगा जरूर, तब आपको समझ में आएगा कि हमारे मम्मी पापा ना तो इस फिल्म की इतनी तारीफ क्यों करते थे और उसके गाने क्यों इतने हिट है। अब गानों की बात है तो इस फिल्म से कुछ गाने एंजॉय करते हैं। 32 years of हम आपके हैं कौन। Stay tuned with RJ Adnan on MGM 90.8 FM।

0: 90.8 FM
1: न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट से निकला ये गाना।
2: एक कुड़ी दाना मोहब्बत,
1: ये लिखा था शिव कुमार बटालवी जी ने। तो कहानी कुछ ऐसी है कि जब बचपन में शिव कुमार बटालवी जी एक मेले में गए थे तो वहाँ पर उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम था मैना। तो बटालवी जी के नैना मैना से टकराए। वो रेगुलरली ना तो रोज मेले में मिला करते थे पूरे 10 दिन, और 11वें दिन जब वो लड़की मेले में नजर नहीं आई तो उन्होंने सीधे एक इश्तिहार न्यूज़पेपर में दिया, और उस लड़की का फोटो तो उनके पास नहीं था, तो उस इश्तिहार में उन्होंने उसे डिस्क्राइब किया कुछ ऐसे। यानी कि सूरत उसकी परियों जैसी है। तो इस तरीके से ये गाना निकला था। और बटालवी जी एक ऐसे राइटर थे जिनको मार दिया गया था। बटालवी जी मोहब्बत पर लिखते थे, ये बात कुछ लोगों को मंजूर नहीं हुई और उसके बाद उन्होंने बटालवी जी का कत्ल कर दिया।

0: फक्त इंजिनियर नव्हे तर फ्युचर रेडी प्रोफेशनल बनायचंय,
1: मग निवडा MGM विद्यापीठातील केमिकल इंजिनिअरिंग. सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनिअरिंग, AIML, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन.
0: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम,
1: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, MNC कोलॅबोरेशन, इंडस्ट्री व्हिजिट्स आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप.
0: लिमिटेड सीट्स. आजच MGM विद्यापीठ केमिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 98 71 78 44.
2: क्या आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहां आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए MGM के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहां डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546. MGM University Institute Chhatrapati Sambhaji Nagar.
3: Cosmetic Technology cha UG ani PG sathi admission milva. BTech ani MTech Cosmetic Technology sathi MGM University madhe Basic and Applied Sciences cha antargat aajach aapla pravesh nishchit kara.
4: Ja madhe sarva prakarcha cosmetic products che formulation, raw materials, tanchi chemistry ani analysis sobatach new advanced technology hi shikhnyas milel. Shivay vividha namankit companyanmadhe placement chi hami suddha.
5: Admissions open for 2025-26. MGM University and 6 SIDCO. Visit mgmu.ac.in. Call 9503082913.

0: 90.8 FM।
1: किसी से बात कर रही हो तो पहले कैसे लेटर लिखना पड़ते थे, वेटिंग लिस्ट में रुकना पड़ता था एसटीडी पीसीओ के, लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं। तो सोशल मीडिया के जमाने का फायदा उठाते हैं और हम सभी लोग ना तो 24/7 एक साथ कनेक्ट रह सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है RJ Adnan। आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स हो, कुछ कहना हो, आपको दिल की बात शेयर करनी हो, हैशटैग आपको कोई नहीं सुन रहा हो, तो मेरी जान मैं हूं आपको सुनने के लिए और आपके प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए। देखो मैं आपको जज नहीं करूंगा, लेकिन आपके दिल में जो बात हो, मन हल्का करना हो, तो आप जब मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो। आपकी बातें मेरे दरमियान ही रहेंगी और वो कहीं और जाएंगी नहीं। बस मन हल्का होना बहुत जरूरी है। आज के वक्त में क्या है पता है क्या, सुनने वाले बहुत कम है। हमें बताना तो बहुत कुछ होता है, लेकिन सुनने वाला कोई मिलता ही नहीं है। आर्ट ऑफ लिसनिंग कहीं दिखाई नहीं देती है। हर किसी को कुछ बताए तो वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन देता है। भाई हमें सोल्यूशन नहीं चाहिए, बस सुन के ले यार तू। तो वही सुनने का काम मैं करता हूँ ना, आपका भाई आपका दोस्त बनकर अदनान का वही काम है। सो बेझिझक कॉल कीजिएगा 8421247339 इस नंबर पर। नंबर फिर से एक बार सुनिए 8421247339। इसी के साथ आप मुझे इंस्टा पर डीएम भी कर सकते हो RJ Adnan इस इंस्टा पेज पर। अब इंस्टा पर आ ही गए ना, तो वहां पर एक ग्रीन कलर का बटन है जिसको फॉलो बटन कहते हैं, तो उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि आप मुझे फॉलो कर सके। वहां पर भी मैं आपको ना तो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकूं। सो इतनी दरख्वास्त है कि फॉलो भी कीजिएगा और अपनी बातें भी शेयर कीजिएगा। वादा करता हूं कि सुकून के साथ सॉल्यूशन भी आपको मिल ही जाएगा। बाकी आपका प्यार बरकरार रखिए और सुनते रहिए MGM 90.8 FM। All is well, RJ Adnan ka morning show, freshness light radio ka flow on MGM 90.8 FM।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM,
0: साथ है तो बात है।

0: से बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे,
2: मैं हूं साथ तेरे, मैं हूं साथ तेरे,
1: तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
3: MGM 90.8 FM साथ है।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM,
0: साथ है तो बात है।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM,
0: साथ है तो बात है।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM।

0: जागे श्रीमती जी, आंखें खोलिए।
1: क्या चाहिए?
0: अरे भाई देर हो गई।
1: तो मैं क्या करूं?
0: कॉफी, कॉफी चाहिए।
1: कॉफी, कॉफी और मैं।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजरा होगा। पूरे दिन की भागदौड़ और बिजी स्केड्यूल के बाद अब वक्त है थोड़ा रिलैक्स करने का, मुस्कुराने का और अपने पसंदीदा गानों का मजा लेने का। शाम का ये खूबसूरत समय हमें मौका देता है खुद के लिए कुछ पल निकालने का। चाहे आप घर लौट रहे हो, फैमिली के साथ समय बिता रहे हो या फिर चाय की चुस्की का आराम से मजा ले रहे हो, हम आपके साथ हैं आपके शाम को और भी खास बनाने के लिए। आने वाले कुछ मिनटों में हम सुनेंगे बेहतरीन गाने, दिलचस्प बातें और ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी। तो बने रहिए हमारे साथ और अपनी इस प्यारे सी शाम का पूरा आनंद लीजिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा और अब वक्त है अगले शानदार गाने का। सुनते रहिए आपका फेवरेट शो दिल से ओनली ऑन MG 90.8 फिल्म साथ है तो बात है।

0: इंजिनियर नव्हे तर फ्युचर रेडी प्रोफेशनल बनायचंय,
1: मग निवडा MGM विद्यापीठातील केमिकल इंजिनिअरिंग. सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनिअरिंग, AIML, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन.
0: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड्स ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम,
1: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, MNC कोलॅबोरेशन्स, इंडस्ट्री व्हिजिट्स आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप.
0: लिमिटेड सीट्स. आजच MGM विद्यापीठ केमिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 9891-7844.
2: क्या आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहां आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए MGM University के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहां डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और ऑल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 7620322186 or 7017085546. MGM University, NCT, Chhatrapati Sambhaji Nagar.
3: Cosmetic Technology cha UG ani PG sathi admission milva. BTech ani MTech Cosmetic Technology sathi MGM University madhe Basic and Applied Sciences cha antargat aajach apla pravesh nishchit kara.
4: Ja madhe sarva prakarcha cosmetic products che formulation, raw materials, tanchi chemistry ani analysis sobatach new advanced technology hi shikhnyas milel. Shivay vividha namankit kampanyanmadhe placement chi hami suddha.
5: Admissions open for 2025-26. MGM University and 6 Sidco. Visit mgmu.ac.in. Call 9503082913.

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। जिंदगी में बहुत सारी चीजें आती जाती रहती है, पैसा, काम, शोहरत और कई नए लोग भी, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हर मोड़ पर हमारे साथ खड़े रहते हैं और वो है हमारे दोस्त। कई बार छोटी छोटी गलतफहमियां, बिजी लाइफ या फिर अपने ईगो की वजह से हम अपने अच्छे दोस्तों से दूर हो जाते हैं, लेकिन सच कहे तो एक सच्चा दोस्त मिलना आसान नहीं होता। जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ लगे तब एक दोस्त का मैं हूं ना कहना ही हिम्मत देता है। आपकी खुशी में जो सबसे ज्यादा खुश हो और आपके दुख में बिना बुलाए साथ खड़ा हो जाए, वही तो असली दोस्त होता है। इसलिए अगर आपके पास ऐसा दोस्त है तो उसे संभाल कर रखिए। कभी कभी खुद पहल करके बात कर लीजिए, एक मैसेज भेज दीजिए या बस उसका हाल चाल पूछ लीजिए, क्योंकि रिश्ते तभी मजबूत रहते हैं जब उन्हें समय और प्यार दिया जाता है। याद रखिए, दोस्त जिंदगी की सबसे कीमती दौलत होते हैं, उन्हें खोने मत दीजिए, क्योंकि नए दोस्त मिल सकते हैं लेकिन पुराने दोस्त की जगह कोई नहीं ले सकता। इसी खूबसूरत सोच के साथ चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गाना, ओनली ऑन MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। मॉनसून का मौसम अपने साथ ठंडी हवाएं, बारिश की फुहारें और एक अलग ही ताजगी लेकर आता है। इस मौसम में गर्मी कम हो जाती है, इसलिए हमें अक्सर प्यास भी नहीं लगती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे शरीर को पानी की जरूरत भी कम हो गई है। कई बार हम पूरे दिन के काम में बिजी रहते हैं और पानी पीना भूल जाते हैं। प्यास न लगने की वजह से हमें एहसास भी नहीं होता कि शरीर में पानी की कमी हो रही है, लेकिन कम पानी पीने से थकान, सिर दर्द और कमजोरी जैसी परेशानियां हो सकती है। इसलिए बारिश के मौसम में भी अपने पानी पीने की आदत को बिल्कुल न बदले, थोड़ा थोड़ा करके दिन भर पानी पीते रहे। घर से बाहर निकलते समय पानी की बोतल साथ रखे और खुद को हाइड्रेट रखे। याद रखिए, अच्छी सेहत के लिए सिर्फ अच्छा खाना ही नहीं बल्कि पर्याप्त पानी पीना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए चाहे मौसम कोई भी हो, पानी पीना मत भूलिए। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए और पानी पीने का याद दिलाते रहिए अपनों को भी। अभी इसी प्यारी सी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं कुछ खूबसूरत गाने की ओर। आप लोग कहीं मत जाइए, बस सुनते रहिए MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। ऐसा ही एक खूबसूरत गाना है तेरा सुरूर। इसकी आवाज़ और इसके जज्बात सीधे दिल को छू जाते हैं। जब भी प्यार यादें और किसी खास इंसान का एहसास दिल में हो तो बस ये गाना याद आ जाता है, तब ऐसे गाने और भी करीब लगने लगते हैं। तेरा सुरूर ये सिर्फ एक गाना नहीं एक एहसास है, और इसकी सबसे खास बात ये है कि हर सुनने वाले को अपनी कहानी याद दिला देता है। कभी किसी की मुस्कान, कभी किसी की याद, तो कभी वो खूबसूरत पल जो दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। इस गाने को अपनी आवाज दी है हिमेश रेशमिया ने, और उनकी अलग पहचान वाली आवाज इस गीत को और भी खास बना देती है। यही वजह है कि इतने सालों बाद भी ये गाना लोगों की पसंद बना हुआ है। तो अगर आप भी इस शाम को थोड़ा रोमांटिक, थोड़ा भावुक और थोड़ा यादगार बनाना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए अपने दिल की धड़कनों के साथ। महसूस कीजिए ये खूबसूरत गाना ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। साथ है तो बात है।
1: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचे, मग एमजीएम युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज।
2: 12वी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड बीबीए एलएलबी आणि पदवी नंतर 3 वर्षांचा एलएलबी हा पदवी प्रोग्राम निवडा। पदव्युत्तर शिक्षणासाठी एलएलएम मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे। त्यासोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा।
1: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च एमजीएम युनिव्हर्सिटी किंवा व्हिजिट mgmu.ac.in।
3: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी एमजीएम पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। एमजीएम क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। एमजीएम पेट केअर।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से, और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। आजकल मौसम चाहे कोई भी हो, बहुत से लोग प्यास लगते ही सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक की तरफ हाथ बढ़ा देते हैं। ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक उस समय अच्छी तो लगती है, लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि हम अपने शरीर को क्या दे रहे हैं? कोल्ड ड्रिंक्स में अक्सर बहुत ज्यादा शुगर होती है। जरूरत से ज्यादा चीनी हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती। इसके अलावा इनमें ऐसे कई एलिमेंट्स होते हैं, कंटेंट्स होते हैं, जो सिर्फ स्वाद बढ़ाते हैं लेकिन सेहत को कोई खास फायदा नहीं पहुंचाते। कुछ मिनटों की ठंडक और स्वाद के लिए हम कई बार अपनी हेल्थ को नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आदत रोज की बन जाए तो इसका असर धीरे धीरे हमारे शरीर पर भी दिखने लगता है। इसीलिए जब भी प्यास लगे कोशिश कीजिए कि पानी पिए, या फिर नारियल पानी, नींबू पानी या घर के बनी कोई हेल्दी ड्रिंक चुने। ये न सिर्फ आपकी प्यास बुझाएगा बल्कि शरीर को भी फायदा पहुंचाएगा। याद रखिए, अच्छी सेहत कोई एक दिन में नहीं बनती, छोटी छोटी अच्छी आदतें ही हमें स्वस्थ और फिट बनाती है। इसलिए अगली बार जब कोल्ड ड्रिंक और हेल्दी ड्रिंक में से एक चुनने को मौका मिले तो अपनी सेहत को जरूर प्रायोरिटी देना। इसी खूबसूरत सोच के साथ अब बढ़ते हैं कुछ शानदार गानों की ओर। इन द शो दिल से ओनली ऑन MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। आजकल जब भी हल्की सी भूख लगती है तो हम में से कई लोग तुरंत वेफर्स, चिप या दूसरे पैकेट वाले स्नैक्स की तरफ बढ़ जाते हैं। ये खाने में स्वादिष्ट जरूर लगते हैं, लेकिन अगर इन्हें रोज की आदत बना लिया जाए तो ये हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। पैकेट वाले फूड में अक्सर ज्यादा नमक, तेल और कई तरह के प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। कुछ देर के लिए ये हमारी भूख को शांत कर देते हैं, लेकिन शरीर को वो पोषण नहीं दे पाते जिसकी उसे सच में ज्यादा जरूरत होती है। अगर हम थोड़ा सा समय निकाले तो घर पर बने हुए हेल्दी विकल्प चुन सकते हैं, जैसे भुना चना, मखाना, स्प्राउट्स, फल या घर का बना पोहा और उपमा, ये तो बेस्ट रहेगा। ये न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं बल्कि हमारी सेहत का भी ख्याल रखते हैं। याद रखिए, अच्छी सेहत की शुरुआत हमारी रोज की छोटी छोटी पसंद से होती है। आज जो हम खाते हैं वही कल हमारी सेहत बनाता है, इसलिए कोशिश कीजिए कि पैकेट वाले स्नैक्स कम खाए और घर के बने पौष्टिक खाने को ज्यादा महत्व दे। स्वस्थ रहना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस सही चीजों को चुनने की आदत बनानी होती है। इसी हेल्दी सोच के साथ अब बढ़ते हैं अगले गाने की ओर। इन द शो दिल से ओनली ऑन MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। क्या आपने कभी सोचा है कि हम छोटी छोटी भूख लगने पर या दोस्तों के साथ बाहर जाते समय कितने पैसे मार्केट के खाने पर खर्च कर देते हैं? कभी चिप्स, कभी बर्गर, कभी पिज्ज़ा, तो कभी कोई और फास्ट फूड। उस समय तो मज़ा आता है, लेकिन धीरे धीरे इसका असर हमारी जेब और हमारी सेहत दोनों पर पड़ता है। अगर हम मार्केट के खाने को थोड़ा कम करते और घर के खाने की ओर कदम बढ़ाए, उन्हें अपनाए, तो इसके दो बड़े फायदे हो सकते हैं। पहला, हमारी सेहत बेहतर रहेगी क्योंकि घर का खाना ताज़ा और पौष्टिक होता है। दूसरा, हमारे पैसे भी बच सकते हैं। सोचिए, जो पैसे हम रोज रोज बाहर के खाने पर खर्च करते हैं, वही पैसे बचा कर किसी अच्छी चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यानी फायदा ही फायदा। घर का बना नाश्ता, फल, सलाद या कोई हेल्दी स्नैक न सिर्फ शरीर को ताकत देता है, बल्कि हमें लंबे समय तक फिट और एक्टिव भी रहता है। इसलिए हमारे पूर्वज भी घर के खाने को प्रेफर करते थे। और हालांकि तब तो बाहर का खाना भी नहीं मिलता था। सही था यार, एटलीस्ट ऑप्शन नहीं होता था तो हम प्रायोरिटी अपनी सेहत को ही देते थे इनडायरेक्टली। तो क्यों ना आज से एक छोटी सी शुरुआत की जाए, जितना हो सके मार्केट के खाने को कम करें और घर के स्वाद और सेहत को अपनाएं। आपकी जेब भी खुश रहेगी और आपका शरीर भी आपका धन्यवाद करेगा। इसी प्यारी से सोच के साथ बढ़ते हैं अगले कुछ अमेजिंग गानों की ओर। ओनली ऑन MG 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। देखते देखते हमारी आज की खूबसूरत शाम अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है। उम्मीद है कि आज का साथ, बातें, गाने और छोटे छोटे मैसेजेस आपको पसंद आए होंगे। शाम का समय सिर्फ दिन खत्म होने का नहीं बल्कि पूरे दिन की यादों को समेटने का और कल के लिए नई उम्मीदें जुटाने का भी होता है। अगर आज का दिन अच्छा रहा तो उसके लिए शुक्रिया कहिए, और अगर दिन थोड़ा मुश्किल रहा तो यकीन रखिए कि कल एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही है। घर पहुंचकर अपने परिवार के साथ थोड़ा समय बिताइए, अपनों का हाल पूछिए और खुद को भी थोड़ा आराम दीजिए। जिंदगी के भागदौड़ में यही छोटे छोटे पल सबसे बड़ी खुशियां बन जाते हैं। आपकी मुस्कान, आपका प्यार और आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसी प्यार के लिए दिल से शुक्रिया कहती हूँ मैं। अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई शाम, नए गानों और नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, गुड नाइट एंड स्टे ट्यून्ड टू एमजीएम 90.FM। साथ है तो बात है।
1: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचे, मग एमजीएम युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज।
2: 12वी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड BBA LLB आणि 10वी नंतर 3 वर्षांचा LLB हा पदवी प्रोग्राम निवडा। पदव्युत्तर शिक्षणासाठी LLM मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे। त्यासोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा।
1: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च MGM युनिव्हर्सिटी किंवा व्हिजिट mgmu.ac.in।
3: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी MGM पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। MGM पेट केअर।

बात उस फिल्म की है जिसने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं बल्कि हर इंडियन फैमिली के दिल पर राज किया था। हम आपके हैं कौन, इसको ना तो आज 32 साल पूरे हो गए हैं और 90s का वो दौर जब शादी का मतलब सिर्फ फंक्शन नहीं इमोशंस हुआ करते थे, और इस फिल्म ने हमें सिखाया कि एक फैमिली भी किसी फेस्टिवल से कम नहीं होती। उसके गाने तो लाजवाब थे यार, पहला पहला प्यार है पे धड़कने बढ़ जाती थी, दीदी तेरा देवर दीवाना पर हर एक शादी का घर डांस फ्लोर बन जाता था, और जूते दो पैसे दो इस गाने के बिना तो कोई शादी मुकम्मल हो ही नहीं पाती थी, और प्रेम और निशा क्या केमिस्ट्री थी ना, ना और ड्रामा ना और एक्शन, बस प्यार शरारत और वो मासूमियत जो आज भी दिल को छू जाती है। इस फिल्म का हर कैरेक्टर अपना सा लगता था, जैसे भाभी, दीदी, मामा, चाचा और हाँ वो टफी, अरे भाई उस डॉग ने तो पूरी लव स्टोरी सेट कर दी थी। और आज भी ना टीवी पर ये फिल्म आ जाए तो रिमोट ऑटोमेटिकली रुक जाता है, डायलॉग्स याद है, गाने याद है, फिर भी हर बार देखने का मजा अलग लगता है। तो चलिए फिर सेलिब्रेट करते हैं 32 इयर्स ऑफ हम आपके हैं कौन, क्योंकि कुछ फिल्में सिर्फ देखी नहीं जाती जी जाती है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आरजे अदनान, और अब वक्त है उसी एवरग्रीन साउंडट्रैक का जिसने हर जनरेशन को एक साथ गुनगुनाना सिखा दिया था। हम आपके कौन का ये ब्यूटीफुल गाना जो अभी प्ले होगा ओनली on MGM 90.8 FM.

90s का वो जमाना था जब OTT नहीं होता था, लेकिन एंटरटेनमेंट फुल ऑन होता ही था। और उस दौर की एक फिल्म थी हम आपके हैं कौन, और इस फिल्म को ना 32 साल पूरे हो रहे हैं, यानी कि 32 years of हम आपके हैं कौन। सच बताओ जब ये फिल्म रिलीज हुई थी ना तब हम तो पैदा भी नहीं हुए थे यार, लेकिन हमसे पहले हमारे मम्मी पापा इसके डाई हार्ट फैन थे। उनके लिए ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, एक सेलिब्रेशन थी। सिनेमा हॉल जाना एक इवेंट होता था, नए कपड़े पहनना और फिल्म देखने के बाद घर आकर हर गाना गुनगुनाना, उसमें एक अलग ही मजा था। शादियों में तो यार इस फिल्म के गानों के बिना शादी मुकम्मल होती ही नहीं थी, और फैमिली मोमेंट्स के लिए पूरी फिल्म रिफ्रेशमेंट हो जाती थी। मुझे अभी भी याद है गर्मी की छुट्टियाँ होती थी 2005-06 के दरमियान, जब गर्मी की छुट्टियों में हम नानी के वहाँ जाते थे तो मेरे मामा रेंट देकर यह फिल्म की कैसेट लेकर आते थे और पूरी फैमिली बैठकर ये फिल्म देखती थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उस वक्त ना सोशल मीडिया नहीं था, ना रील्स, ना मीम्स, फिर भी ये फिल्म इतनी वायरल हुई कि घर घर की कहानी बन गई थी। वायरल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के वक्त में वायरल पता होता है सबको क्या है, उस वक्त में सुपर डुपर हिट तो ये फिल्म थी ही। आज हम जेंजी और मिलेनियल्स भी इस फिल्म को देखते हैं और समझ आता है कि क्यों हमारे पेरेंट्स आज भी इसके गाने सुनते हैं और स्माइल कर देते हैं। तो इसीलिए यार कुछ मूवीज टाइम के साथ पुरानी नहीं होती, वो जनरेशन से जनरेशन तक पास आउट होती है। तो आपने अगर ये फिल्म अब तक पूरी नहीं देखी है तो देखिएगा जरूर, तब आपको समझ में आएगा कि हमारे मम्मी पापा ना तो इस फिल्म की इतनी तारीफ क्यों करते थे और उसके गाने क्यों इतने हिट है। अब गानों की बात है तो इस फिल्म से कुछ गाने एंजॉय करते हैं। 32 years of हम आपके हैं कौन। Stay tuned with RJ Adnan on MGM 90.8 FM।

0: 90.8 FM न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट से निकला ये गाना।
1: एक कुड़ी दाना मोहब्बत,
0: ये लिखा था शिव कुमार बटालवी जी ने। तो कहानी कुछ ऐसी है कि जब बचपन में शिव कुमार बटालवी जी एक मेले में गए थे तो वहाँ पर उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम था मैना। तो बटालवी जी के नैना मैना से टकराए। वो रेगुलरली ना तो मेले में मिला करते थे पूरे 10 दिन, और 11वें दिन जब वो लड़की मेले में नजर नहीं आई तो उन्होंने सीधे एक इश्तियार न्यूज़पेपर में दिया, और उस लड़की का फोटो तो उनके पास नहीं था, तो उस इश्तियार में उन्होंने उसे डिस्क्राइब किया कुछ ऐसे। यानी कि सूरत उसकी परियों जैसी है। तो इस तरीके से ये गाना निकला था। और बटालवी जी एक ऐसे राइटर थे जिनको मार दिया गया था। बटालवी जी मोहब्बत पर लिखते थे, ये बात कुछ लोगों को मंजूर नहीं हुई और उसके बाद उन्होंने बटालवी जी का कत्ल कर दिया।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार

0: मेरा एक दोस्त है जिसके पापा पुलिस में है और उसके पास एक फोर व्हीलर है। जब हम बाहर जाते हैं दोस्त लोग तो वो गाड़ी पर ना पुलिस की प्लेट लगाता है, वो नाम जो लिखा होता है ना वो। मैंने पूछा भाई ऐसा क्यों करता है, तो कहता है भाई अपने को ना तो इम्प्रेशन जमाना है और ऐसा पुलिस नाम दिखाना तो ट्रैफिक में कोई दिक्कत नहीं आती। अब उसे क्या पता इम्प्रेशन के चक्कर में और डिप्रेशन में भी जा सकता है। हेलो मायसेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र पुलिस ने ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन लेने का इंस्ट्रक्शन जारी किया है। प्राइवेट गाड़ियों पर बिना आधिकारिक तौर पर पुलिस लिखना या पुलिस की आइडेंटिटी का गलत इस्तेमाल करना महंगा पड़ सकता है और रिपोर्ट के मुताबिक क्या है कि ऐसे प्लेट्स का मिसयूज होता है इल्लीगल कामों में, लोगों को डराने में, धमकाने में। तो इसी वजह से अब ऐसे केसेस में मोटर व्हीकल एक्ट के साथ साथ क्रिमिनल एक्शन भी लिया जा सकता है। सो याद रखिएगा, पुलिस लिखने का हक सिर्फ ऑथराइज पुलिस व्हीकल को ही है। सिर्फ स्टाइल के लिए, इम्प्रेशन जमाने के लिए या फिर VIP लगने के लिए अगर आप अपने गाड़ियों पर पुलिस लिखोगे तो बड़ा पछताओगे। तो मैं तो मेरे दोस्त को अब समझाने वाला है, भाई ऐसा मत कर वरना तो इम्प्रेशन के चक्कर में डिप्रेस हो ही जाएगा। और आप भी जरा बताइए अपने दोस्तों या जो कुछ ऐसी हरकतें करता है उनको। स्टे ट्यून्ड।
1: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचे, मग MGM युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज।
2: 12वी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड BBA LLB आणि 15वी नंतर 3 वर्षांचा LLB हा पदवी प्रोग्राम निवडा। पदव्युत्तर शिक्षणासाठी LLM मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे। यासोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा।
1: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च MGM युनिव्हर्सिटी।
3: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी MGM पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। MGM पेट केअर।

अजंता की ओर, जिसे दुनिया वर्ल्ड हेरिटेज के नाम से भी जानती है। हेलो, मायसेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। और यू नो व्हाट, हर साल ना तो लाखों टूरिस्ट नहीं आते हैं, लेकिन एक सवाल आज भी है, और वही सवाल है कि दो साल पहले अजंता के लिए इलेक्ट्रिक बसेस शुरू करने का वादा किया गया था, लेकिन वो कहते हैं ना

सिर्फ कागजों पर ही नजर आता है। आज भी टूरिस्ट को डीजल बसेस से सफर करना पड़ता है। डीजल का धुआं सिर्फ हवा को नहीं बल्कि अजंता की हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स और इसके एनवायरमेंट को भी धीरे धीरे नुकसान पहुंचा सकता है। और टूरिस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि ई बसेस में टेक्निकल प्रॉब्लम थी और उन्हें इस महीने तक शुरू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कितने टाइम से की जा रही है, पिछले 4-5 महीनों से बस कोशिश की जा रही है। सवाल सिर्फ बसेस का नहीं है जनाब, सवाल है हमारी जिम्मेदारी का। अगर हम अपनी हेरिटेज को फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा नहीं सकते तो भाई क्या ही फायदा फिर उसका। पोल्यूशन फ्री ट्रांसपोर्ट सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, जरूरत भी है। और इस डीजल बसेस से हो क्या रहा था कि इसका सीधा असर ना तो अपने अजंता के उस पर हो रहा था, वहाँ की पेंटिंग्स पर हो रहा था, एंड ये इतने साल पुरानी पेंटिंग से दुनिया भर से लोग यहाँ पर उसे देखने आते हैं, एंड खुदा ना खास्ता इस पोल्यूशन की वजह से कुछ हो गया तो उस अजंता के उसकी खूबसूरती पूरी चली जाएगी। प्रशासन ने सीरियसली ध्यान देना चाहिए एंड डीजल बसेस हटाकर इलेक्ट्रिक बसेस यहाँ पर लानी चाहिए। अब प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि एक महीने के बाद ये बसेस आने वाली है जो कि इलेक्ट्रिक बसेस रहेगी। देखते हैं एक महीने के बाद आएगी या नहीं आएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाय द वे आपको पता है क्या कि अपने अजंता केव्स में हर साल कितने टूरिस्ट आते हैं? नहीं पता, वो भी बताऊंगा कुछ ही देर में। तब तक स्टे ट्यून।

0: इंजिनियर नव्हे तर फ्युचर रेडी प्रोफेशनल बनायचंय.
1: मग निवडा MGM विद्यापीठातील केमिकल इंजिनिअरिंग. सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनिअरिंग, AIML, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन.
0: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड्स ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम,
1: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, MNC कोलॅबोरेशन्स, इंडस्ट्री व्हिजिट्स आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप.
0: लिमिटेड सीट्स. आजच MGM विद्यापीठ केमिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 98 91 71 78 44.
2: क्या ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहाँ आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहाँ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 7620322186 और 7017085546. MGM University, NCT, Chhatrapati Sambhajinagar.
3: Cosmetic Technology cha UG ani PG sathi admission milva. BTech ani MTech Cosmetic Technology sathi MGM University madhe Basic and Applied Sciences cha antargat aajach apla pravesh nishchit kara.
4: Ja madhe sarva prakarcha cosmetic products che formulation, raw materials, tanchi chemistry ani analysis sobatat new advanced technology hi shiknyas milel. Shivay vividha namankit companies madhe placement chi hami suddha.
5: Admissions open for 2025-26. MGM University and 6 Sidko. Visit mgmu.ac.in. Call 9503082913.

अपने शहर के एक और पहचान है अजंता एलोरा की गुफाएं, आप वहां पर तो गई होगे। हेलो, मैं सिल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमटीएम 90.8 एफएम। और यू नो व्हाट, अजंता एलोरा की गुफाएं तो हम सभी लोग जाते हैं, और कोई भी अपने शहर में आया ना तो हम उसे ये दिखाने तो जरूर लेकर जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ना तो हर साल यहां पर कितने लोग विजिट करते हैं, तो 2025-26 को लेकर यानी कि अब तक अजंता में तकरीबन 4,73,000 से ज्यादा टूरिस्ट ने यहां पर विजिट किया था। इसमें 4,00,000 इंडियन थे और 11,000 से ज्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट थे। और एलोरा के उसकी बात करें तो यहां पर हर साल तकरीबन 5,00,000 से ज्यादा टूरिस्ट विजिट करते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। अब इसमें से नेशनल कितने और इंटरनेशनल कितने, इसकी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन तो अब तक आई नहीं है, इसका रिपोर्ट आना बाकी है। वैसे बात एक है यार, अजंता की केयर्स हो या तो फिर एलोरा की केयर्स हो, यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पोल्यूशन, जिसकी वजह से ना तो इन गुफाओं की जो खूबसूरती है, इसमें की जो पेंटिंग है वो खराब होती जा रही है। और प्रशासन ने कहा था कि वो ऐसे टूरिस्ट प्लेस पर ना तो इलेक्ट्रिक बसेस शुरू करेंगे, 2 साल पहले कहा गया था, लेकिन वो अब तक हुआ ही नहीं। कुछ टाइम के लिए शुरू कर दी गई थी, बाद में वो बसेस बिगड़ गई और उसके बाद वापस कभी रास्तों पर दिखी नहीं। तो अब कहा गया है कि 1 महीने के अंदर ये बसेस वापस से शुरू होगी। आई होप कि ये जल्द से जल्द शुरू हो जाए, ताकि इन गुफाओं की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए हमें पोल्यूशन से इनको दूर रखना पड़ेगा। शुरुआत बसेस से कर सकते। वैसे सोचने वाली बात यह है कि जब अजंता और एलोरा जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हमारी पहचान है, तो उनकी सुरक्षा सिर्फ सरकार की नहीं, हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो आप सोचोगे हमारी जिम्मेदारी कैसे, बेसिक चीज वहां पर जाने के बाद उस गुफाओं की खूबसूरती को बरकरार रखना है, तो वहां के दीवारों पर कुछ भी मत लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। एंड कचरा वचरा मत फेंकिए, जरा तहजीब से वहां पर रहिए, इतना ही मैं कहूंगा। बाकी वैसे अजंता की गुफाओं का जिक्र ना तो एक गाने में हुआ है, वही गाना भी हम एंजॉय करते हैं, आफरीन।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे,
2: मैं हूं साथ तेरे, मैं हूं साथ तेरे,
1: तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ है।

0: इसको देखने दो,
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो जलने दो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ भाई?
1: हाँ तो हो जाए
0: खुल्लम।